0: ಎಂದರು.
1: ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಮಾಚಾರ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ವೈಷ್ಣವಿ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे. वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे. पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है. इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है. प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे. इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल है. श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है. इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी. इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है. राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं. इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए. उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया.
2: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली.
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए. इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है. हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है.
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो. उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी. श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा. भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार है और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है. जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है. दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है. मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा. यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है. इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं. ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है. भारत आज इंदौर में वेस्ट इंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा. ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

आकाशवाणी संबलपुर जुहार आंचलिक खबर पढ़ुचन सुप्रीति मिश्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस रो 100 बछर पूर्ति अवसर संबलपुर गंगाधरमीर विश्वविद्यालय प्रेक्षालन गोटे खास कार्यक्रम आयोजन करा जायतिला। संघर सर संघ चालक मोहन भागवत कार्यक्रम थी जोग देथिले। स्वयंसेवक संघ मानकर तरफ समाज थी परिवर्तन हे पारबा और इथिलागी सबको किछि ना किछि त्याग करबार के हेबा बोली ए अवसर श्री भागवत कहिछन। कार्यक्रम थी सांसद धर्मेन्द्र प्रधान, राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी, पंचायतीराज मंत्री रविनारायण नायक, संबलपुर बरकड़ और झारसुगुड़ा विधायक सहित 15 का कार्यकर्ता जोग देथिले। राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय मानके होतबा छात्र संसद निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था और आईन श्रृंखला परिस्थिति के नेकरी पुलिस महानिर्देशक विनयतोष मिश्रंकर अध्यक्षताते गोटे उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हो जाइछे। बैठक ती सब जिलार एसपी, रेंज आईजी और डीआईजी आवासी जरिए रहीकि निज निज जिलार स्थिति बाबते जनइथिले। शिक्षानुष्ठान परिसन्न हिंसा रोकवार, निर्वाचन प्रक्रिया के सुरखुर्ती सारबार और निर्वाचन उत्तर हिंसा रोकवार उपरे पुलिस महानिर्देशक जोर दैछन। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपट्टी संबलपुर गस्त आसिकी देवरीगढ़ वन्यप्राणी संरक्षण बुली देखिछन। देवरीगढ़ भित्तिभूमि उन्नति, पर्यटक मानक लगी होता सुविधा सुजोग और वन्यप्राणी मानक संरक्षण लगी नि पदक्षेप मानक अनुध्यान कर जंगल करतृपक्ष प्रशंसा कर स्थानीय लोकंर पर्यटन सहित जोड़ी कामके प्रशंसा करार सहित इ उद्यम वन्यप्राणी संरक्षण के साज करार सहित निजुक्ति सुजोग सृष्टि करवा राज्यपाल कहिछन। संबलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी धवलमुखी बेश दर्शन करवार के भक्त

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ସମୟ ସକାଳ 8:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏବଂ ପରେ ଶୁଣିବେ ପୀଠ ପରିକ୍ରମା ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्ट इंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
2: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
3: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती है। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में

0: निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
1: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्नअराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
1: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
3: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं, इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
1: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन,
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
3: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर उपवास रखकर घट स्थापन

0: जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक गरबा स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनू, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधु, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मादोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमरीका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
2: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
3: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
2: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रि शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार, दिल्ली की बसों में 2,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है, कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, NIA को पायलट पर केस। दैनिक जागरण की खबर है, पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिनी सराय, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा,

0: आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ और भारत आज शाम इंदौर में वेस्ट इंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 13,000 करोड़ रुपीज इन चेन्नई तमिलनाडु दिस आफ्टरनून। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कंप्लीट्स 1 year टुडे। Northern Railway says all train services to operate as per their normal schedule today. Navratri, 9-day long festival to worship goddess Durga begins.

0: पीएम किसान हिताधिकारी जरूरी सूचना योग्य चाषी निकट में सहायता पहुंचाइबा एवं डाटाबेस को स्वच्छ और निर्भुल करने भारत सरकार आरंभ कर एक स्वतंत्र अभियान अक्टोबर 2 रु 31 तारीख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो एही अभियान पीएम किसान योजनार आर्थिक सहायता निरवच्छिन्न भावे पाइबा पाई एग्रीस्टाक पोर्टाल रे कृषक पंजीकरण बैंक खाता सह आधार सीडिंग एवं ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक एथिपई पंचायत स्तरीय कृषि कर्मचारी राजस्व अधिकारी किंबा निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई एही प्रक्रिया तुरंत संपूर्ण करंतु कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार
1: एचआईवी व्यापीबार चारोटी कारण रही जेपरिक सुरक्षा विहीन जौन संपर्क एचआईवी पॉजिटिव मां को ठारु तांको शिशु को व्यवहृत छुंची किंबा सीरिंज व्यवहार करिबा एचआईवी संक्रमित रक्त किंबा रक्त उत्पादन रु संचार नेबा
2: एचआईवी भली मारात्मक संक्रमण रु बंचिबा पई सतर्कता अवलंबन करंतु एचआईवी संबंधी सतर्कता सूचना ऑनलाइन परामर्श और सहायता पई 1097 को कॉल करंतु किंबा www.breakfreeindia.org को विजिट करंतु
1: ओडिसा राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा हितरे जारी
3: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
5: नानी नमस्कार जय जगन्नाथ।
6: जय जगन्नाथ आप केमिति अछथि?
5: मु तो बहुत भलो रे अछि। मु रेडियो पार्टनर चित्रसेन सबर कहूछि नमिता उपा।
6: देखिले मु भी आपन को चिन्ह पकेले आपन भी मते चिन्ह पकेले।
5: सचि आइया को मोर नमस्कार जणै देबे।
6: सार को तरफ मध्ये आपन को नमस्कार। आओ आज केउ गीतटि सुनिबा को चाहिबे?
5: येशु मती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। एक गीत सुने देबे नानी?
6: एक गीत त आमे सुने देबु जे मो भाभी थिली जते बेले नवरात्र आरंभ हेई जाईची चित्रसेन भाई किछि मांकर भजन गाई के हमकु सुनेबे।
5: मांकर भजन टा सुने देबे। दुर्गा हे मेरी मां अंबे हे मेरी मां एक गीत टा सुने देबे। आउ
6: ठीक अछि ताले दीटा भितर को गीत टी सुनेबी कहंतु?
5: सुने देबे दुर्गा हे मेरी मां अंबे हे मेरी मां ई गीत सुने देबे।
6: ठीक अछि आउ कोन करूथिले?
5: বর্তমানে বে ঘরে টিকে আইছে নানি এ কাম কমিটি চলছে তো প্লাস্টর চালিছে যে টিকে আইছে। আও
6: আজি হোটেল রে কেমিতি সব ঠিকঠাক?
5: তো আজি তো ধুম চালিছে নানি।
6: হ্যাঁ
5: হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধ হইছে তো।
6: আপনকার গারে কেউ যাত্রা হয় দশহরা সময়রে?
5: আমার গারে মা কনক দুর্গাঙ্কর যাত্রা হয়।
6: কেউ তিথিরে করা যায়?
5: মন্দিরে আছে।
6: নাই মন্দির তো আছে যে যে দশহরা সময়রে কেউ তিথিরে যাত্রা টেই করা যায়?
5: অষ্টমী।
6: অষ্টমীরে করা যায়।
5: हाँ
6: आपण मैंने सब जानती देखिबा को?
5: हाँ नानी
6: कौन सब करा जाय सेठरे?
5: एठे तो नाटो हेबो नानी।
6: नहीं सेटा तो हुए मु कहूची जेमती छतर यात्रा मां बाहर के आसंती सेमती यात्रा करा जाय कोठी हमर जो खंडा बसा यात्रा हुए तो सेमती आपण को गांरे जो यात्रा टी हुए क्यों प्रकार ताको सेलिब्रेट करा जाय?
5: नहीं नानी सेटा तो पूजा हुए नानी।
6: हां मंदिर रे केवल पूजा करा जाय।
5: हां जो माने इने मानसिक करि थांती हमकर पूर्ण हला बेले से माने दियंती आउ।
6: हां हां आउ आपण
5: पूजा हबो तापर रात रे का नाटक हबो नानी। आउ
6: आउ आजकल हमर कार्यक्रम सब सुनुचंती कि नहीं?
5: हां नानी सुनुचु नानी।
6: ठीक अछि ताले चित्रसेन भाई सुनिबा मन पसंद रो गीतटी?
5: हां नानी रोइले नमस्कार।
6: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: दीदी नमस्कार दीदी
1: नमस्कार
0: दीदी मुई बराडुंगा गोटियापड़ा कलाहांडी रु नूरपराज माझी कहूतिली दीदी आकाशवाणी परिवार रो समस्त भाई भौणी तथा आकाशवाणी भवानी पाटणा सुनुतिबा समस्त भाई भौणी मानके शारदीय दुर्गा पूजा रो अभिनंदन दीदी
1: आम तरफ रु मध्ये आपनको शारदीय दुर्गा पूजा अवसर रे अनेक अनेक शुभेच्छा ओ शुभकामना
0: दीदी
1: आओ केउ गीतटी आज सुनबाकु चाहिबे
0: दीदी आज ओडिया कथा चित्र शुणे पूजा फूल
1: को गीत
0: गाय चित्त जेना आरती सजाड़ी बसी पुजारी
1: ठीक अच्छे शुणीदेव आज ये गीत टी पसंद कले
0: दीदी आज गीत टी समस्त शारदीय दुर्गा पूजा रे आमर जिते भाई भोनी माने समस्त अच्छे तांकर दीर्घ कामना एवं समान को डेडिकेट करबा पई पसंद कली दीदी
1: बहुत भलो कथा आपन समस्त को इते भलो पाउचंती समस्त को पई इते सुंदर गीत बाछी जंती
0: दीदी
1: आओ आपन को गां रे कोन सब पूजा पाठ हो एई दशहरा समय रे
0: आम गां रे लंकेश्वरी मंदिर अछि सेठी पूजा होए दीदी
1: हां हां
0: आओ आमर

0: आगको आहुरि कथा हेबा मनपसन्दर गीत मध्ये सुनिबा किन्तु समय हे जाइछि वर्तमान गोटी छोट बिरतिर
1: पीएम किसान हिताधिकारीको पई जरुरी सूचना योग्य चासिंको निकटरे सहायता पहुंचाइबा एवं डाटाबेसको स्वच्छ ओ निर्भुल करिबा पई भारत सरकार आरंभ करुछन्ती एक स्वतंत्र अभियान अक्टोबर 2 रु 31 तारीख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो एही अभियान पीएम किसान योजनार आर्थिक सहायता निरवच्छिन्न भावे पाइबा पई एग्रीस्टाक पोर्टल रे कृषक पंजीकरण बैंक खाता सह आधार सीडिंग एवं ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक एथिपई पंचायत स्तरीय कृषि कर्मचारी राजस्व अधिकारी किंबा निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई एही प्रक्रिया तुरंत संपूर्ण करंतु कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार
2: तेबे आरंभ करिबा इन्वेस्टिंग रा पाठ।

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: हेलो,
2: हाँ मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: कहते ग्राम पुष्पी विजयपुर जिला बर्ग रु आज।
1: हाँ, आउ क्यों गीत टी शुणा को चाहिए?
2: आज गीत सुनवा जे तु इटा मोर माँ को पर्व पार्वण आसीगला न दशहरा दुर्गा पूजा माँ को उदेश गोटे हिंदी गीत सुनवा आज करण अर्जुन फिल्म रो जय माँ काली।
1: ठीक अच्छे शुणी देव। आर्तमान कौन करुले?
2: बर्तमान तो आउटा खेत को आसी आम चाष काम करसु मानने धान के पानी मड़ा है सब देखुनि आकाशवाणी भवानीपाटना कल लगे बहुत कष्ट फोन टा लगला आज।
1: हाँ, कहीं समस्त ट्राए कर कथा भी हूँ आम तो एनगेज ही आसु
2: बहुत
1: खुशी कथा समय बाहर करम गुड़ी
2: दशहरा
1: तो कलहांडी बहुत धूमधाम हुए जानी विश्व प्रसिद्ध छतर जात्रा अनुष्ठित हुए माँ माणिकेश्वरी पवित्र छतर जात्रा आसंता 19 तारीख रे हबा को जाउची सेते पई फुल प्रिपरेशन रे भवानीपाटना शहर सजई होई उठिची।
2: आज्ञा आज्ञा आज्ञा।
1: आउ आपण भी आसंतु छतर जात्रा
2: देखि आज्ञा निसेज माई आपण भी हमर सोनपुर माँ सोमनेश्वरी कर दर्शन करी आसुन आर आमे भी आपण कर पोलांडी के जिमाई
1: निहाती सेई गोटी देवी हमर विभिन्न जगह रे विभिन्न रूप रे पूजा पाउछंती
2: रूप रे
1: सेई माँ जणे
2: ना ता उने गोची देवी मान कर किनु से गुटे माने रूप ओले अलगा अलगा सब से गुटे देवी नाही।
1: हां, खाली विभिन्न स्थान रे से विभिन्न ना रे पूजा पाउछंती
2: पूजा पाउछन नाही
1: माने सब जगह रे तो गोटे देवी पूजा पाई परबि ना सेते पे ना अलगा किंतु से जणे।
2: आ आ आ
1: ताले सुनिबा आपन को मन पसंद रे गीत टी
2: डेडिकेट करमा।
1: हां ठीक अछि,
2: आपन को गीत ला स्पेशल डेडिकेट हमर जिन कोलांडी रो श्रोता मोर दादा छन चितसेन सोबर दादा छन सागर साहू आउ भाई मनोज कुमार पटेल नागू पात्र सीमांचल सोबर वृषभ गही आउरी जति आकाशवाणी भवानीपाटना जति भी सुनु जाय सब श्रोता भाई मान को गीत ला डेडिकेट कर देबे। आ
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपन एते सुंदर गीत टी मते डेडिकेट कर थिबारु एवं समस्त श्रोता बंधु मान को ए गीत टी डेडिकेट कर दउछु।
2: धन्यवाद आज्ञा। जय मां माणिकेश्वरी। नमस्कार।
1: नमस्कार। जय मां माणिकेश्वरी।
3: खड़गम चक्र गदेशु चाप परिधान शूलम शुंडी शिर शंखम संदत सिंह करै।

0: का नाम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: रेडियो सम्राट मुनाबंडा कोटिला कनपुर जगतपुर कहते
1: हाँ केमी अच्छा
0: मुझे सब बिंदास रही आशाती माँ शारा आशीर्वाद बिंदास खुश माँ शारा आप घंटा ओडे रखि था
1: आम समस्ते बहुत भल रु आपण मान भाया श्रोता जदि आम पाखे अच्छा तो सब बेले आम खुशी ही रही
0: देख तो आप आज देखते गोटे प्रोग्राम विषय कल अक्टोबर सात तारीख अलका मैम सुंदर कल मत लगला जो खोला दरकार दसटा दस रे एगारटा दस तुम गोटे घंटा पूरा मोबाइल आकर बांधे बसली सुंदर 2026 अलका मैम सब बेस्ट खोला दरकार एते सुंदर भाव उपस्थान सारी कले आते भाव प्रोग्राम टा कले गीत पूरा हार्ट टचिंग गीत लगी पूरा हृदय छुई जाती आ जब अलका मैम शुणुए
1: कार्यक्रम शुणी मतामत देते आमको आहरी उत्साहित लगे कार्यक्रम
0: लगे सब मत पूरा हृदय पूरा तरल सुंदर लगला आशा भी कहते आगे प्रोग्राम करेंगे आपंट बहुत आशा अच्छे क्या आप खोला दरकार सुंदर लगुच मत लगे आप 2026 गोटे बेस्ट खोला दरकार करेंगे निहारिका मैडम बहुत भल करें भी बहुत आशा अच्छे लिशा मैडम हूँ
1: ठीक अच्छे आपंकर आशा पूरण करने चेष्टा करी
0: हाँ गीत दिंतु फिल्म ना अच्छे अंधा कानून आते रोते हसना शिख हस्त हस्त रोना ना आगे गीतटा डेडेट करदे पंकज मिश्रा चुलबुली रश्मिता भई चित्रसन सब सीमांचल सबर अरे मनोज पटेल क्षमा सागर साहू नागो पात्र जोश भई मंजु पात्र रूपेश प्रिंस दीक्षा गोपाल एवं मेघना देव बासंती गोटा विशेष कर आपको निहारिका मैडम को अलका मैडम को आते आप मन गोटा सब आज मान को गीतटा डेडेट करते विशेष कर गीतटा आज स्वतंत्र मुझे अलका मैम को डेडेट कर
1: ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद
0: रोज माँ का नमस्कार।

0: आकाशवाणी भवानीपाटणा सबुबेले आपणंक सेवारे।
1: आकाशवाणी भवानीपाटणा आमर परवर्ती प्रसारण प्रथमे हिंदी एवं परे परे इंग्रजी संवाद रिले करी प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा

0: हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे श्रद्धालु उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। उन्होंने ये भी कामना की है कि नवरात्रि का पर्व राष्ट्रीय एकता की भावना और देश की प्रगति के संकल्प को सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका व्यक्तित्व और संदेश पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल के दौरान उनकी निर्भीक आवाज को याद किया। उन्होंने कहा कि वे सुशासन और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि 3 नवंबर को होने वाले मध्य अवधि चुनावों से पहले ईरान अमेरिका के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका इस जारी संघर्ष को जल्द ही खत्म कर सकता है। साउथ अमेरिका के शहर टेनेसी में एक राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान इस सोच के साथ और कदम उठा सकता है, इससे अमेरिका को राजनीतिक नुकसान होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज के साथ तूफान और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। वहीं कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी आज बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: एथर शिल्पी अधिरथ कुमार चक्रवर्ती, शिल्पी गायछंती सुरेश कुमार दासंकर रचना।

0: ଶୁଣିଲେ କେତୋଟି ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बासमुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली तेल शोधन संयंत्र में ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना का शिलान्यास करेंगे। वे कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने का

0: भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा किया गया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर नगर निगम, थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। गांधीनगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय 130 उम्मीदवार 11 वार्ड की 44 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi arrived in Chennai this morning, where he will inaugurate projects worth 13,000 crore rupees. The Prime Minister held a roadshow en route to the venue of the event at Porur in Chennai, where he flagged off the metro rail service from Porur to Ponnamalai. The Prime Minister travelled along with the Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay on the metro rail. The 14.5-kilometre metro rail service features a unique 3.7-kilometre double-decker structure with advanced signalling systems designed to support driverless operation. The Prime Minister will dedicate and inaugurate railway infrastructure projects worth over 750 crore rupees, including 5 Amrit stations at Palani, Vellore Cantonment, Ambasamudram and Paramakuri and Namakkal, which have been redeveloped under the Amrit Bharat Station Scheme. Later, Mr. Modi will leave for the IIT Madras campus, where he will dedicate the Sudha Gopalakrishnan Brain Centre and perform Darshan and Puja at Jal Kandeshwarar Shiva Temple. Delhi Metro Rail Corporation has informed that the entry and exit gates of all 45 metro stations, which were closed due to security reasons, are now open. Meanwhile, the Delhi police said that a lot of videos have been circulated on social media depicting incidents of the past, incidents of other states, or AI-generated content designed to evoke feelings of unrest among the general public. Delhi police advise people to restrain themselves from forwarding such posts and spreading such news. CJP's Abhijit Dipke, Ashutosh Raka and Saurav Das, who were placed under preventive arrest yesterday, have been released by a special executive magistrate court in New Delhi today. According to the Delhi police, all due legal procedures were followed and the three individuals were produced before the special executive magistrate, Delhi Cant, this morning. The police said that they were released upon furnishing a surety bond of 50,000 rupees for maintaining peace and good behaviour for a period of 1 year. The Supreme Court today directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the centre to ensure the metro services operate according to the normal schedule and that internet services remain uninterrupted subject to law and order requirements. The court said metro and train services should function normally in accordance with the prevailing law and order

0: to Rajasthan today. IMD has also said that hot and humid weather conditions is likely at isolated places over coastal Karnataka, Konkan and Goa for the day. In men's cricket, India will face West Indies in the third T20 International at Holkar Stadium in Indore today. The match will begin at 7 p.m. Indian Standard Time. The five-match series is currently level at 1-1. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Punnamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of Chennai Metro Rail Project. Prime Minister to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai this afternoon. India condemns repeated attacks on Riyadh Airport, expresses concern over loss of lives and damage to property. Supreme Court directs authorities to prevent illegal detention of peaceful gatherers, ensure free movement of people and uninterrupted internet services. Nepal issues evacuation warnings along Buri Gandaki River after rising water sweep away houses in Gorkha district. And in men's cricket, India to take on West Indies in the third T20 International in Indore this evening. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा

कि किसी को कोई असुविधा ना हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल

0: उन्हें 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।
2: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
3: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये पीपल्स पद्म बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
2: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
4: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक हैं उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
2: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की ही तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु

0: एकता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का एक एक नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
1: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्मम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: अमेरिका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
2: लोगों ने अलर्ट किया है लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
0: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी, सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
3: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये

0: मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कटक आपण माने आंचलिक संवाद सुनी परिबे एई विज्ञापन परे।
2: बन्या हेउ बा महावात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाय सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग और सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का 1-1 नागरिक है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवा समाप्त कर दी थी। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने सांसद के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। सुश्री स्वराज ने बताया कि इस वर्ष मई में 11 छात्राओं ने बिमोल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। मामले की जाँच के बाद विश्वविद्यालय ने बिमोल को प्रोफेसर के पद से हटाने का निर्णय लिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी चिंतक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक जीवन

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: कम समय रे अधिक फायदा मात्र गोटिए क्लिक रे बढ़िया पसिला।
2: अजणा लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही। आरबीआई कहे
3: सचेतन हुंतु सतर्क रुहंतु।

0: ଆକାଶବାଣୀ ଫନିପାଟଣ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେକ୍ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक,

0: तमिलनाडु के ये अनुभव यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से यह यात्रा जारी रहेगी। इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वड़ा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
0: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकुइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकुइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर MTGEM पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आज सवेरे अचानक आई बाढ़ से अनेक पुल और घर बह गए। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। उधर मिस्र में उदयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। लद्दाख पुलिस बाइक रैली टीम गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गई है। रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना का जहाज सह्याद्री अभ्यास इंद्र 2026 में शामिल होने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच गया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: आकाशवाणी भवानीपाटण श्रोताबंधु शुणु कार्यक्रम संपर्क सूचना प्रथम चलित अधिवेशन

0: ମିଳିଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
1: ବିଲ୍ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆସିଯିବ ନା।
0: ତୋ ଗର୍ଲ କଣ ହଉଛି?
2: ବିଲ୍ ହଉଛି।
0: ଚାଲ ତୋ କାର୍ଡ ଦେ, ପିନ୍ ଦେ।
1: आरबीआई कहे जे निजर पिन ओटीपी सीवीवी किंबा इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड काहाकु दियंतु नाही। ऑनलाइन बैंकिंग केवल निजर ही कंप्यूटर मोबाइल एवं सिक्योर नेटवर्क द्वारा करंतु। हां एटा खाइबारो चैंपियनशिप थिला ना कोनो। आरबीआई कहे सचेत हुंतु सतर्क रहंतु।
3: तेबे आरंभ करबा इन्वेस्टिंग रा पाठ।

0: न्यू जनरेशन को अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो अवसर मिल रहे हैं, एजुकेशन का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। 2014 में भारत में करीब 750 यूनिवर्सिटीज थी, आज इनकी संख्या 1300 से भी ज्यादा हो गई है। बीते वर्षों में देश को अनेक IIT, IIMs, IIIT और एम्स मिले हैं।
1: प्रधानमंत्री कहिछन्ते जातीय शिक्षा नीति 2020 अधीनरे देशरे शिक्षार गुणवत्ता वृद्धि पाइछि। विश्वस्तरें भारतीय शिक्षानुष्ठानगुड़िकर मान्यता बढ़ुची। देशरे 2014 मसीहारे प्राय 750 विश्वविद्यालय थिबाबेले वर्तमान एही संख्या 1300 पहुंचिछि। कॉलेज संख्या मध्य 38,000 रु वृद्धि पाइ 52,000 अतिक्रम करिछि। प्रत्येक युवक युवतीक स्वप्न और प्रतिभा भिन्न थाए। क्रीडा क्षेत्र में क्यारिअर गढ़ाक चाहूबा युवपीढ़ी देश में नूतन क्रीडा भित्तिभूमि सृष्टि सह उन्नत प्रशिक्षण और सहायता जोगाई दि जाए। 2030 राज्यगोष्ठी क्रीड़ा आयोजन भारत प्रस्तुत रहा 2036 ओलंपिक्स आयोजन लक्ष्य आगक बढ़ुच्छे। यह युवपीढ़ी नूतन सुजोग सृष्टि कर श्री मोदी कहते। प्रत्येक महिला स्वप्न देखा ज्ञान आहरण एवं सुजोगर सदुपयोग आगक बढ़िया सह समाज परिवर्तन आणवाक राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभम पाटी आह्वान देते। बरगढ़ जिला कोशल विद्यालय बोईंग सुकन्या कार्यक्रम स्टेम एवं एआई लैब उद्घाटन कर राज्यपाल कहते यह ग्रामांचल युव प्रतिभा सशक्त करने आकांक्षा पूरण में सहयोग कर जिज्ञासार पोषण नवसृजन और नूतन उद्भव प्रेरणा देव। भारत वर्तमान अविश्वसनीय परिवर्तन सह आगक बढ़ुच्छे। महिला माने सशक्त होगा सह वर्तमान समय साहसर सह प्रशासन विज्ञान वैषयिक क्रीड़ा उद्योग सेना और सामाजिक क्षेत्र में आगक आसुच्च राज्यपाल कहते। यह पूर्व राज्यपाल अत्ताबिराठे कोशल आंध्र सांस्कृतिक संगठन बैठक में जोगदे। राष्ट्र निर्माण और समृद्ध ऐतिह्य युवपीढ़ी को जोड़ी हेबाकु सांसद धर्मेन्द्र प्रधान परामर्श देते। संबलपुर ठारे मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित वंदे मातरम शिविर में जोगदे से प्रधान कहते विकसित भारत संकल्प को साकार करिबारे युवक मान भूमिका सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। वंदे मातरम मंत्र स्वाधीनता संग्राम समय देशवासी मातृभूमि प्रति अगाध प्रेम और समर्पण भाव एकत्र कर प्रेरणा जगह। एक भारत श्रेष्ठ भारत भावना को साकार करने दिगरे यही शिविर एक महत्वपूर्ण पदक्षेप बोली श्री प्रधान कहते। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज मंत्री रवि नारायण नायक जोगदे युवपीढ़ी मध्य जातीय एकता देश प्रेम सांविधानिक मूल्यबोध और सांस्कृतिक आदान प्रदान उपर आलोकपात करते। समग्र देश में 20 वंदे मातरम शिविर आयोजन ओडिशा समेत आंध्रप्रदेश छत्तीसगढ़ दिल्ली मध्यप्रदेश मिजोराम और पश्चिमबंग बहु युव प्रतिनिधि ए जोग देथिले। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
2: एते दिन परे आम घर को आसीबा कथा तमानकर मन पड़ला नै
3: से कथा छाडंतु मो भौजा आपण केमती अछंती
2: टेंशन को पीछा छाडु छी जे
3: टेंशन
2: छी जम्मारु सीरियस हो ठीक रे पाठ पढा पढी करूनी ता सांगो साथी माने केते आगे गेलेनी
4: देखले त यांकरी जोगो जो मोर पूरा टेंशन रे रहू छी दिने से मते कहिला
5: बाबा मां तंकर सब स्वप्न को मो पर लदी दउछंती जदि सब बले एंती हबो तले मु कोन ठीक से पढ़ी परबी ना रिजल्ट मोर भलो होई जीवो।
6: ओ संग ठीक कइछ सब पिले स्वतंत्र
7: आपण अने जवान निजे पिला को अवकाश से तुलना करंती बरु तमन विश्वास आणंतु कि तार परीक्षा भलो हबो तार मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहले ता निज क्षमता अनुसार से निश्चित भलो करिबो।
2: परीक्षार चाप आपण निद्रा किंवा एकाग्रता को प्रभावित करुच्छे कि परामर्श टेलीमानस देयमुक्त नंबर 1414 रे जोगाजोग करंतु। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।
1: आश्विन मास शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथिर प्रथम दिन में आज मां आदिशक्ति प्रथम स्वरूप शैलपुत्रीर उपासना आरंभ हो शारदीय नवरात्र 9 दिन धरी जगज्जननी मां दुर्गा एवं तांकर 9 भिन्न स्वरूप को विधि विधान सहकारे पूजा कराजिबार परंपरा रही। व्रतधारी माने निष्ठार सह मां उपासना करुछंती। नवरात्र प्रथम दिन में स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग मां समलेश्वरी निकट में समस्त सुख समृद्धि कामना करिछंती। बलांगीर जिलार अधिष्ठात्री देवी मां समलेश्वरी दिव्य दर्शन करने अत्यंत सौभाग्यर विषय बोली श्री महालिंग कहते। नवरंगपुर अधिष्ठात्री देवी मां भंडार घरणी पीठ से आज शारदीय नवरात्र पूजा अवसर में दिन गोटाए

आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन संपा राय जुहार पहला मुखिया खबर शक्ति आउ उपासनार पर्व नवरात्रि आष्ठानु हेला मूल शक्ति पीठ मानके चालीछे माँकर खास पूजा अर्चना संबलपुर न चालीछे माँ समलेश्वरी धवलमुखी दर्शन प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के आज पुरला गुटे बछर बाल्य विवाह बंद आ कन्या संतान के सहयोग देवार बार्ता नेकरी आज पालन करा जाउछे अंतर्जातीय कन्या संतान दिवस और दक्षिण पूर्व बंगोपसागर न आबा मंगलवार तक हेई पारे लघुचाप क्षेत्र पाणीपाग विभाग सूचना एथर पूरा खबर संबलपुर सहित पश्चिम ओडिशार सबु देवी पीठ मानके नवरात्रि पूजा मूल हेछे गलाकाल ठानु माँ समलेई धवलमुखी बेस्ती दर्शन दौछन हजार हजार भक्त लाइन थी जाइकिरी माँकर इबेश दर्शन करुछन सुवर्णपुर जिलान गलाकाल अधरायतनु महाबली जात्रा मूल हेछे इलाकार अधिष्ठात्री देवी माँ सुरेश्वरीकर मंदिर नु कलाधला छती छतर बरण होकर आसला उतरु राति समलेश्वरीकर मंदिर नु बरुआ महानदी खणी बुढ़ा राजा पीठ के जाते से जिलार भिन भिन देवी पीठ न भिल सुलह पूजा मूल हो शताधिक माहेश्वरी पीठन देवी माहेश्वरी आ परमेश्वरीकर सुलह पूजा जारी रही गलाकाल देवी धवलमुखी बेशथी श्रद्धालु मानक दर्शन देछन बौद्ध जिलार भिन भिन शक्तिपीठ आ मंडप मानके आष्ठानु नवरात्र पूजा मूल हेछे बौद्ध सहर मालीसाही आ राम मंदिर न थिबार दुर्गा मंदिर ठाने धूमधाम थी सुलह पूजा चलीछे इतार सहित जिलार प्रसिद्ध शक्तिपीठ पुरुणा कटक माँ भैरवींकर ठाने भिल सुलह पूजा चलीछे नुआपड़ा जिलार पीठ मानके माँ दुर्गांकर दशहरा परब मूल हेछे पीठ मानके सुलह उपचार सहित सकाल आर संजे रीतिनीति थी पूजा होछे देवगढ़ जिलार शक्तिपीठ मानके नवरात्रि पूजा मूल हेछे देवी प्रधानी पीठ माँ दक्षिण काली मंदिर माँ कनकदुर्गा मंदिर माँ बनदुर्गा पीठ माँ माहेश्वरी पीठ न रीतिनीति अनुसार पूजा चलीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवरात्रि अवसर देशवासी को शुभेच्छा जनईकिरी शंकर लगी सुख शांति समृद्धि आ उत्तम स्वास्थ्य कामना करिछन सामाजिक गणमाध्यम जरिए प्रधानमंत्री एकता और प्रगति लागि देशर संकल्प के आहुरी मजबूत करबार के देशवासी को आह्वान देछन प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के आज बछरे पुरीछे गला बछर अक्टोबर मास 11 तारीख थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशर 100टा आकांक्षी जिलान कृषि क्षेत्र के अत्का बरकस करबार लक्ष्य नेकरी इ योजनार शुभारंभ करथिले केन्द्र कैबिनेटर अनुमोदन अनुसार योजनार समया के 6 बछर धारिज करा जाइछे जिला स्तर न कृषि क्षेत्र आवश्यकता पूरा करबार लक्ष्य नेकरी संपृक्त राज्य घरोई क्षेत्र 11टा मंत्रणालय आ विभाग 36टा अलगा योजना के समन्वित करी पीएम धनधान्य कृषि योजना के कार्यकारी करा जाइछे आज हेउछे अंतर्जातीय कन्या संतान दिवस लिंगगत समानता आर टुकेल छुआमान को समान सुजोग देवार के ई दिन पालन करा जाउछे 2011 मसिया डिसेंबर 19 तारीख दिन मिलित जातिसंघर साधारण परिषद थी अंतर्जातीय कन्या संतान दिवस पालन लगी प्रस्ताव पारित हेबार उतरु 2012 मसिहानु फी बछर अक्टोबर 11 तारीख के अंतर्जातीय कन्या दिवस भावे पालन करा जाउछे टुकेल माने जनता शिक्षा पोषण शारीरिक आर मानसिक कल्याण आईनगत अधिकार सबु क्षेत्र न भेदभाव शिकार नाई हेबे से बाबदे समाज के सचेतन करबार ई दिन पालन रो उद्देश्य है इ बछर अंतर्जातीय कन्या संतान दिवस रो विषय बाल्य विवाह बंद करमा आ टुकेल छुआ मानकु सहयोग देमा रखा जाइछि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा अंतर्जातीय बालिका दिवस अवसर टुकेल छुआ मानकर सामर्थ्य सपन आर असीम संभावना के सुर्ता करिछन सबु टुकेल छुआ मानकर सुरक्षा सम्मान शिक्षा आ सर्वांगीन सशक्तिकरण सुनिश्चित करबार के सरकार प्रतिबद्ध बोली मुख्यमंत्री कहिछन राज्यर भिन भिन जागान ई दिवस आज पालन करा जाउछे जातीय परीक्षण संस्थान एनटीए परिचालित यूजीसी नेट 2026 परीक्षा लगी आवेदन प्रक्रिया मूल हेछि इ मासर 28 तारीख तक ऑनलाइन जरिए आवेदन रो सुजोग रहिछे

0: आइबा चौबीस घंटा भितर घड़घड़ी सहित वर्षा होगा बोली नौटा जिला के पाणीपाग केन्द्र तरफ सतर्क सूचना जारी कर शेष मुखिया खबर फेर घाए शक्ति आ उपासनार पर्व नवरात्रि आजठानु हेला मूल शक्तिपीठ मानके चली से माँ खास पूजा अर्चना प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के आज पुरला गुटे बछर बाल्य विवाह बंद आ कन्या संतान के सहयोग देवार बार्ता नहींक्री आज पालन कराऊे अंतर्जातीय कन्या संतान दिवस आउर दक्षिण पूर्व बंगोपसगर आवा मंगलवार तक हेपे लघुचाप क्षेत्र पाणीपाग विभाग सूचना आज आंचलिक खबर इन शेष है जुहार।
1: ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं खेल जगत की हलचल और ताजा खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। मैं हूं शक्ति सिंह और मेरे साथ हैं अतर सईद।
1: श्रोताओ, आज के इस संस्करण में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया के प्रमुख खेल खबरों, क्रिकेट के रोमांच और मैदानों से मिल रही ताजा जानकारियों की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के साथ।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच इंदौर में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम 2036 तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उदयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब अपने नाम किया।
1: शुरुआत खबर के साथ, वेस्टइंडीज ने भारत के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 17 ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। शक्ति, अब तक के खेल के आधार पर अगर हम चर्चा का आरंभ करें तो आपको क्या लगता है, क्या भारत इस मैच को जीतकर श्रृंखला में एक बार फिर बढ़त बनाने में सफल होगा या फिर वेस्टइंडीज के साथ कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है?
0: जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं कि ये संघर्ष का सवाल बिल्कुल जायज़ उठता है, क्योंकि जिस तरह का पिछला मुकाबला रहा है, भारत एक बड़ा स्कोर बनाया और उसको डिफेंड करने में थोड़ा सा नाकाम साबित हुआ। हालांकि अभी अगर मैच की स्थिति की बात की जाए अतर, तो भारत ने 16 ओवर और 4 गेंद का खेल हो चुका है, 194 रन स्कोर बोर्ड पे चढ़ा लिए हैं। और आज के दिन की जो हाईलाइट रहे वो है अभिषेक शर्मा की शानदार पारी, 6 चौके, 5 गगनचुंबी छक्के और 30 गेंदों पे वो 69 रन की पारी आई है, जिसने भारत को इस समय इस मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। भारत चाहेगा कि इस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए और एक बड़ा स्कोर बना करके उसको डिफेंड करने की कोशिश की जाए।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, आज भी अभिषेक ने अपने हिस्से का काम तो पूरा कर दिया है, 59 शानदार रन उन्होंने बनाए और उसके बाद टीम कहीं ना कहीं थोड़ा सा लड़खड़ा गई। अभिषेक शक्ति, हम कह सकते हैं अभिषेक के बाद।
0: जी बिल्कुल, कुछ पारियां जैसे ईशान किशन की रही या फिर अगर तिलक वर्मा को देखा जाए, नीतीश कुमार रेड्डी, शुरुआत मिली 20-21-28 रन जोड़े इन खिलाड़ियों ने, लेकिन एक बड़ी पारी जो एक बड़े स्कोर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा नाकाम नजर आए ये खिलाड़ी।
1: भारतीय टीम में आज दो बदलाव

0: किए गए हैं। शिवम दुबे की जगह नीतीश रेड्डी तथा कुलदीप यादव की जगह प्रिंस यादव को टीम में शामिल किया गया है। भारतीय टीम ने लखनऊ में खेले गए पहले मुकाबले में मेहमान टीम को 8 विकेट से हराया था, जबकि रांची में दूसरे मुकाबले में भारत को 249 रन बनाने के बाद भी 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें अब तक 1-1 से बराबरी पर हैं। शक्ति,
1: लखनऊ ने तो भारत का बखूबी साथ दिया, हालांकि रांची में भारत मुकाबला नहीं बचा पाया। इंदौर का मैदान भारत के लिए क्या आंकड़ों की कहानी बयां करता है? तर
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने शक्ति। होलकर स्टेडियम में अगर टीम इंडिया की बात करें तो T20 रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। भारतीय टीम ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में अभी तक कुल जमा 4 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इस दौरान टीम को 3 में जीत मिली है, जबकि सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ये 1 हार भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2022 में मिली थी। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उस मैच में 3 विकेट खोकर 227 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की पूरी टीम 178 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। आज का भविष्य क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमारी शुभकामनाएं अपनी टीम के साथ ज़रूर हैं शक्ति, क्योंकि हम देखते हैं कि संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं हम और निखरते हैं, और ये बात आज भी मुझे लगता है कि चरितार्थ ज़रूर होगी।
1: जी बिल्कुल, चरितार्थ होगी, और भारतीय टीम T20 की नंबर एक टीम है, और उम्मीद होगी दर्शकों को कि ऐसा ही खेल टीम आज दिखाती हुई नजर आए।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने शक्ति, और लगता है कि अंतिम जीत भारत की ही होगी। 5 मैचों की T20 श्रृंखला की अगर बात करें तो अभी तक जैसा कि हमने समाचारों में जाना 1-1 की बराबरी पर हैं, और सीरीज़ के पहले T20 मैच में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज़ को 8 विकेट से हराया था। हालांकि दूसरे T20 मैच में कैरेबियाई टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 249 रन बनाए थे, लेकिन वेस्टइंडीज़ की टीम कप्तान शाई होप की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत 250 रनों के लक्ष्य को 18.3 ओवर में चेस करने में यानी पीछा करने में कामयाब रही थी शक्ति।
1: जी बिल्कुल, तो आज कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का खेमा गेंदबाजों की तरफ होगा कि किस तरह कप्तान शाई होप के बल्ले को रोका जाए और टीम को इस श्रृंखला में 2-1 की बढ़त की तरफ आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में खेलों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सहयोग मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश ये सुनिश्चित कर रहा है कि स्पोर्ट्स केवल मनोरंजन तक सीमित न रहे।
2: मैं आप में से शायद कई साथी ऐसे होंगे जो स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे। देश भी ये इंश्योर कर रहा है कि स्पोर्ट्स केवल एंटरटेनमेंट तक सीमित न रहे, इसलिए आज भारत में खेलों के लिए नई सुविधाएं बन रही, युवा खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और सपोर्ट मिल रहा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का कद भी बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
2: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है। मुझे विश्वास है आपकी जनरेशन भारत को स्पोर्ट्स की दुनिया में भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी।
1: तो नई ऊंचाइयां अतर दिखने लग गई हैं, और केवल पदक तालिका पे नहीं, महत्वाकांक्षा अब मेजबानी के लक्ष्यों में भी नजर आती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि जो उनकी जो लक्ष्य है कहीं ना कहीं ओलंपिक्स खेलों का लक्ष्य है, ओलंपिक खेलों की मेज़बानी भारत को मिल जाए। हम देख रहे हैं कि 2030 की मेज़बानी जो राष्ट्रमंडल खेलों की है वो तो भारत को मिल ही चुकी है। अहमदाबाद शहर में 2030 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे, लेकिन जहां तक 2036 के ओलंपिक खेलों का प्रश्न है तो भारत की निगाहें अब ओलंपिक खेलों की मेज़बानी पर लगी हैं, और इस बात का संकेत पक्के जज्बे के साथ प्रधानमंत्री महोदय ने आज भी दिया है।
1: जी बिल्कुल, वो प्रतिबद्धता जो लगभग हर मंच से नजर आती है, उसके लिए भारत के लगातार प्रयास, चाहे वो विश्व कप स्तर की

0: प्रतियोगिताएं हों, भारत ने कदम कदम पे, चाहे वो अभी भारत की हाल की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी हो, एक सफल आयोजन जो हर राह प्रशस्त कर रहा है, एक नया मार्ग बना रहा है कि किस तरह हम लोग बड़े टूर्नामेंट्स के लिए ना सिर्फ प्रतिभाग के लिए तैयार हैं, मेज़बानी के लिए भी तैयार हैं।
1: बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं और हमने पूरी कमर कस ली है शक्ति। हालांकि भारत के साथ जर्मनी, हंगरी, कतर, कोरिया गणराज्य, साउथ अफ्रीका और तुर्की जैसे 7 देश भी शामिल हैं जो ओलंपिक खेलों यानी 2036 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के लगातार बातचीत में दिलचस्पी ले रहे हैं। भारत के प्रोजेक्ट के लिए हम बात करें तो अहमदाबाद को प्रस्तावित मेज़बान शहर के तौर पर चुना गया है।
0: जी बिल्कुल, और अहमदाबाद ने कई मौक़ों पे खुद को, क्या है वो भारोत्तोलन चैंपियनशिप हो, क्रिकेट विश्व कप के फाइनल हो, हर कदम पे खुद को साबित किया है। और महज मेज़बानी की बात क्यों की जाए, अतः तमाम योजनाएं जो लगातार खिलाड़ियों को एक उच्च स्तर का प्रशिक्षण और सहयोग देने का काम कर रही हैं, उन पर भी नज़र डालने जैसा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा शक्ति। और इसके अलावा एक बात और मैं चर्चा करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री महोदय की जब भी बात होती है और खेलों में उनका जो खेल प्रेम है वो साफ तौर पर हमें नज़र आता है, चाहे वो ग्रामीण खेलों की बात हो, युवा खेलों की बात हो, खेलो इंडिया की बात हो, या फिर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना हो, या फिर दूसरे खेल हैं, जनजातीय खेल हैं, या फिर विश्वविद्यालय स्तर के जो खेल हैं, हर एक खेल पर प्रधानमंत्री महोदय की नज़र है। और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री महोदय उसके लिए जो प्रस्तावित चीज़ें होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनका टारगेट कहीं ना कहीं लक्ष्य खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी नीचे से ऊपर तक उठें, उनको हर वो सुविधा जिसकी उनको आवश्यकता है, कोचिंग की आवश्यकता है या फिर दूसरी जो सहूलतें हैं उनका ज़रूरत है, तो वो सारी पूरी हो रही हैं और नतीजा हमें देखने लगा है। चाहे वो एशियाई खेल हों, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हों, चाहे बड़ी बड़ी प्रतियोगिता हों, भारतीय खिलाड़ी चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, सोना ला रहे हैं।
0: जी बिल्कुल अतर, और आपने प्रशिक्षण की बात की, सहयोग की बात की, मेरी नज़रों में आता है 19 नवंबर 2023 की वो तस्वीर जब भारतीय टीम दुर्भाग्यवश फाइनल मुकाबला विश्व कप का हारी थी और प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से मिलने पवेलियन पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, तो आपका साहस कितना बढ़ता है।
1: बिल्कुल, और खिलाड़ियों का मनोबल तब और बढ़ जाता है शक्ति जब प्रधानमंत्री महोदय किसी भी जीत के बाद खिलाड़ियों को अपने आवास पर बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल का 94वां संस्करण आज वाराणसी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ साइकिल चलाकर देश को फिटनेस का संदेश दिया।
2: डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुब्बारे उड़ाकर संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। खेल मंत्री ने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले एथलीट्स और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, ईंधन की बचत और मोटापे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना था। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा,
3: साइकिलिंग से पोल्यूशन का भी सॉल्यूशन होता है, फ्यूल की भी बचत होती है, साइकिलिंग से ट्रैफिक का भी समाधान हो सकता है, इसलिए संडे ऑन साइकिलिंग के द्वारा माय भारत के लाखों युवा साइकिलिंग करके फिटनेस का संदेश दे रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है हम सब संडे ऑन साइकिलिंग के द्वारा देश को फिट इंडिया का संदेश दे और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाए।
2: उन्होंने कहा कि संडे ऑन साइकिल के द्वारा मेरा युवा भारत के लाखों युवा साइकिल चलाकर फिटनेस का संदेश दे रहे हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में वाराणसी के युवा नमो घाट पर जुटे हुए हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि हम सभी देशवासियों को फिटनेस का संदेश देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और बात निशानेबाजी की, उदयवीर सिद्धू ने मिस्र के काहिरा में ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 24 वर्षीय उदयवीर ने फाइनल में कुल 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता।
4: He is fighting for gold against the legend of the sport, Christian Reitz, who has 45 World Cup medals. Last shot 9. For 8. The gold, 9.6. It's going to be a gold medal for the Indian athlete who is debuting.
5: Kavir Sidhu ne apne shandar aur sateek nishanon ki badolat aaj Kahira mein ISSF rifle aur pistol nishanebazi Vishw Cup mein Bharat ke liye pehla padak arjit kiya. उदयवीर ने ओलंपिक पदक विजेता जर्मनी के क्रिश्चियन रीड्स को पीछे छोड़ते हुए पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इटली के पाओलो मोना स्पर्धा में तीसरा

0: स्थान पर रहे। इससे पहले उदयवीर ने क्वालिफिकेशन में 585 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उदयवीर की ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता है। इससे पहले उनकी अधिकांश उपलब्धियां 25 मीटर पिस्टल जूनियर सर्किट में रही हैं। सीनियर सर्किट में भारतीय निशानेबाज की एकमात्र पिछली व्यक्तिगत सफलता 2019 में एशियाई चैंपियनशिप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतना थी। काहिरा निशानेबाजी प्रतियोगिता राइफल और पिस्टल निशानेबाजों के लिए इस वर्ष का चौथा और अंतिम ISSF विश्व कप है। यहाँ खिलाड़ी अंतिम निशानेबाजी विश्व कप की राह तलाशने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो ये तो थी निशानेबाजी की बात। एक और खुशखबरी भारत के लिए आज बैडमिंटन के मैदान से आई, जहां अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया। अनमोल ने फाइनल में हमवतन आकर्षि कश्यप को 21-11, 21-14 से हराया। ये अनमोल का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सीनियर खिताब है। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया कल अहमदाबाद में ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल 2026 का उद्घाटन करेंगे, तो यहाँ पर भी दर्शकों से उम्मीदें होंगी कि वे भारी उत्साह के साथ इन खेलों को भी अपना अटेंशन देंगे, अपनी नज़रें देंगे। और श्रोताओं, अब एक बार चलते चलते कार्यक्रम में वापस इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले जा रहे मुकाबले पर नज़र डाल ली जाए। इस समय 19 ओवर और 4 गेंद का खेल हो चुका है, यानी महज 2 गेंदें बची हैं और भारत ने 9 विकेट खोकर के 222 रन स्कोर बोर्ड पर चढ़ा लिए हैं। और इस समय प्रिंस यादव 13 और मयंक यादव 0 के स्कोर पर खेल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, खेल के मैदान की तमाम खबरों के साथ, लेकर के हर मैदान का, हर खेल का अपडेट। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें हमारी ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए शक्ति और अतर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
3: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
2: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
3: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे
4: भारत ही नहीं

0: विश्व का भविष्य भी तय होगा. टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस.
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की.
0: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे. बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा.
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.
0: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा. हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं. आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलअंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: We have seen certain remarks.
3: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
2: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोयजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोयजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
4: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोयजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।

0: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
1: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
0: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
2: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
1: डीकॉलोनाइजेशन।
0: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले 2 दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले

0: स्वीकार हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 13,000 crore rupees in Tamil Nadu, stresses India's progress draws strength from rich cultural heritage and scientific achievements. Prime Minister Modi asserts India offers immense opportunities for youth, urges them to realize their potential for nation's development. Supreme Court directs authorities to ensure unrestricted movement of people and peaceful gatherers are not illegally detained. India rejects UN rights body's remarks on New Delhi events, cites double standards and unwarranted interference in its internal affairs. Flash floods hit Gorkha district of Nepal, 80 people rescued so far, 5 missing. An Indian shooter Uday Veer Sidhu wins the gold in men's 10-meter air pistol event at ISSF World Cup in Cairo. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras today. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research.
2: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
1: Recalling his interactions with former Tamil Nadu chief ministers, the Prime Minister said that despite changes in governments, his commitment to the development of Tamil Nadu and the welfare of its people had remained unchanged. The Prime Minister cited Tamil Nadu's temples, scientific institutions and metro rail network as examples of how tradition and modern development can go hand in hand. The Prime Minister also extended Navaratri greetings to the people of the state. Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Poonamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of the

0: ये आकाशवाणी है। रविवार सरिया संगीत सभा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है पंडित जडेश हुगार जी का तबला वादन। पंडित जडेश हुगार जी का जन्म 4 जुलाई 1977 को हुआ। आपके पिता का नाम भगवंतप्पा हुगार है। पंडित जडेश हुगार संगीत तथा कला परिवार से जाने जाते हैं। आप कल्याण कर्नाटक के जाने माने तबला वादक स्वर्गीय श्री शंकरप्पा हुगार जी के पौत्र है। आप अपने 8 वर्ष की आयु में अपने पिता श्री भगवंतप्पा हुगार द्वारा तबला वादन तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही टॉप ग्रेड उपाधि प्राप्त आकाशवाणी धारवाड़ के टॉप तबला कलाकार आपके चाचा पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर जी से भी तबला वादन में अधिक शिक्षा हासिल की है। कर्नाटक राज्य शिक्षा परीक्षा बोर्ड द्वारा शास्त्रीय संगीत में तबला विद्वत एवं गायन विद्वत की उपाधि, कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से तबला वादन में एमए की उपाधि, आकाशवाणी द्वारा आयोजित किए गए संगीत की ऑडिशन में तबला वादन में टॉप ग्रेड, बी हाई ग्रेड संगीतकार, बी हाई ग्रेड हिंदुस्तानी गायन कलाकार की उपाधियों के साथ फरुखाबाद, पूरब तथा अजरार घराना और दिल्ली घराने की भी उपाधि प्राप्त की है। पंडित जडेश हुगार धारवाड़ संगीत विश्वविद्यालय में लगभग 3 वर्ष संगीत सहायक शिक्षक के तौर पर और कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ में 1 वर्ष अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत रहे। आप केवल देश में ही नहीं बल्कि फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड जैसे विदेशों में भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। साथ ही आप देश विदेशों के कई जाने माने कलाकारों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपके संगीत कार्यक्रम आए दिन आकाशवाणी कलबुर्गी तथा दूरदर्शन केंद्र चंदन बेंगलुरु से प्रसारित होते रहते हैं। आज की इस अखिल भारतीय संगीत सभा में पंडित जडेश हुगार जी प्रस्तुत कर रहे हैं तबला वादन 3 ताल में। हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रदमठ।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा। टुडे वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय पंडित जडेश हुगार। हैविंग इम्बाइब्ड म्यूजिकल इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम हिज फादर श्री भगवंतप्पा हुगार, अ वेल नोन वोकलिस्ट एंड तबला आर्टिस्ट ऑफ कल्याण कर्नाटक रीजन, जडेश इनकल्केटेड अ सेंस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। एट द टेंडर एज ऑफ 8 ही स्टार्टेड लर्निंग तबला अंडर हिज फादर्स गाइडेंस। आफ्टर दैट इट वॉज द टर्न ऑफ हिज अंकल पंडित Satlingappa Desai Kallur, a top-grade tabla artist of Akashwani Dharwad, to impart advanced training in tabla to Jadesh. Belonging to Purab, Farukabad and Azrat Gharana, Jadesh has also achieved the style of Delhi Gharana. A postgraduate in music from Karnataka University Dharwad, Jadesh has achieved many top grades in classical music at a very young age, enthralling audience and connoisseurs all around India and abroad with repertoire of his recitals, incorporating various styles of performances. Jadesh has shared stage with many eminent and senior

0: तबला वादन में तीन ताल अब तक सुन रहे थे। अब सुनिए पंडित जडेश होगर जी से तबला वादन में रूपक ताल हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रदमठ।
1: यू जस्ट हर्ड तबला सोलो बाय पंडित जडेश होगर इन तीन ताल। नाउ लिसन टू रूपक ताल।

0: इस रूपक ताल के साथ पंडित जडेश होगर तबला सोलो समापन कर रहे हैं। हारमोनियम लेहरा संगत कर रहे थे श्री रेवैया वस्त्रद मठ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कलबुर्गी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया गया था।
1: विथ रूपक ताल पंडित जडेश होगर कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल इन टुडेस रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। हारमोनियम लहरा वॉज प्रोवाइडेड बाय श्री रेवैया वस्त्रद मठ। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कलबुर्गी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही क्षण बाद 11 बजे आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
3: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
2: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
3: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें